0: कोई नाम न जाने तेरा।
1: मैं तन जबान तू है मेरे स्वामी, मैं तुझे आगे अरदास, मैं होर थाओ नहीं दिते करो बिनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पाते। सुनिए।

समुंदर दे किनारे एक जोगी राज अपनी अखां बंद करके बैठा है।

इस जोगी राज दे सामने लोई दी संदूकड़ी पई है। हां बादशाह, ते उस वक्त

जनों, आज हम आप लोगों को तीनों लोकों की बातें सुनाएंगे। आज हम ब्रह्मपुरी में गए, वहां वेदों की कथा हो रही थी। फिर हम विष्णुपुरी में गए,

लगे असी जान नहीं सके, इसे वास्ती ता पूछिए। ते जोगी राज कहन लगा, ए बालकी मैं इन लोगों को तीनों लोकों की बातें बता रहा हूं। तीनों लोकों में क्या हो रहा है मुझे तीनों लोकों की सोझी है कि इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है। तो गुरु साहब जी कहन लगे, अच्छा चंगा फिर जोगीराज जरा ए दसो, तिना लोकां दा ज्ञान तां तुहानू है, तुहाडे सामने जड़ी माया वाली संदूकड़ी सी ओ किथे है। जोगीराज ने सामने देखिया ती संदूकड़ी कोई नहीं, जिन्ने लोकी बैठे सन ओ सारे हस पए। ते गुरु साहब जी कहन लगे, भाई तेरी संदूकड़ी किथे? ते जोगी राज कहंदा है, गुरु साहिबां नूं बताओ मेरी संदूकड़ी कहां है। ते गुरु साहिब

साहब जी कहने लगे भाई दुनिया नू कहना है कि मैनू तिना लोकां दी सोझी है क्यों झूठ बोलना है अखी ता मीठे नाक पकड़े अखा बंद करके समाधि ला के लोकां नू धोखा देना है ठगण को संसार सिर्फ लोकां नू ठगण वास्ते जदके तेनु ए पता नहीं तेरी संदूकड़ी किथे है। ते गुरु साहब ने कहा जो अपनी बाणी विच बयान कीता है साहब जी उस जोगी राज नू की समझांदे ने

पाछे कछू ना सूझे। तेनू अपने पिछे दा ते पता नहीं, संदूकड़ी ता तेरे पिछे पई होई है। पिछा देखिया इस जोगी ने ते सचमुच संदूकड़ी एदे पिछे पई सी। शर्मिंदा हो गए ते गुरु साहब ने कहा, भाई दुनिया नू क्यों धोखा देना है, अपने पिछे पई तेनू संदूकड़ी।

बनारस तीर्थ यात्रा वास्ते गया। तीन कुटिया बनिया सन, उन्हां कुटियां दे कोल गया। एक कुटिया दे विचों आवाज आई, नारायण। ये बड़ा खुश होया क्योंकि नारायण परमेश्वर नूं कहा जांदा। दूसरी कुटिया विचों आवाज आई, दामोदर। दामोदर भी भगवान का एक नाम है। तीसरी कुटिया विचों आवाज आई, बिंद्रावन। ते बिंद्रावन कृष्ण भगवान जिस जगह खेडे, ए सेठ बड़ा खुश होया। उन्हां तिन्हां कुटियां दे विचों एक एक साधु बाहर निकलिया।

गली जिना जप मालिया जिना ने गलां विच माला पाईया ने लोटे हाथ नी बग ते हथां दे विच चिट्टे चमकदे होए लोटे फड़े होए ने।

बसुधा खोद करे तोय चूले के धरती खोद के धरती दे विच चूल्हा बनांदे ने, लकड़ा भी धो के बालदे ने, पर उस तरह सारे मानस खावे जे इन्हां दा वस चले ते जिंदे इंसान नू मार के खा जाण।

गंगा किनारे बैठे सन। इन्हां दे सामने एक होर संत बैठा सी समाधि लगा के। कोई धनी आदमी आया, गंगा दे पार जाना सी, बेड़ी दूसरे पासे सी, इस वास्ते इस पेखी संत दे कोल ए धनी आदमी बैठ गया। गल्लां बातां करदा रहा, बेड़ी आई, ओ धनी सेठ जान लगा अपनी माया वाली वांसली उथे भुल गया। उस पेखी संत ने अपना आसन चुकया, ओ माया वाली थैली अपने थले रख के आसन विछाया, चौंकड़ा मार के ते बैठ गया। ते भगत नामदेव जी

दूसरे पासे जाके फिर वापस आया। उस पेखी संत नु पुछिया, संत जी मैं तुहाडे कोल बैठा सी, मेरी माया वाली वास

कि जिस तरह पानी दे विच बगला जाके एक लत दे पार खड़ा हो जांदा है अखां बंद करके एदा रंग चिट्टा हुंदा है ते पानी दे विच रहण वालियां छोटियां छोटियां मच्छियां सलाह करदियां ने चलो पैना बड़े वड्डे संत महापुरश आए ने जेड़े इक लत दे पार अखां बंद करके सिमरन करदे ने ओ सारियां मच्छियां ते आंदियां ने दर्शना वास्ते बगले नूं संत समझ के पर बगला जिहड़ा है इक लत दे पार अखां ते बंद हुंदियां ने पर कैरी अख करके देखदा रहिंदा है कि केड़ी मच्छी मेरे ज्यादा कोल है ओ ते मत्था टेकदियां ने संत समझ के ते ओदों ही पता लगदा है जदू बगला मच्छी नूं मुंह विच पा के ते उड्डण दी करदा है। भगत जी कहिंदे ने इह संत भी ओह जिहे ने उस बगले दी तरह कि जदू दा लगदा है इंसान नूं लुट पुट के

है पाई, काहे को कीजे ध्यान जपन। जे तुहाडा मन नहीं जुड़दा ते क्यों समाधियां ला ला के बहंदे हो।

के रंग बड़ा सोना पर खांदा की ये कीड़े ते मकौड़े। ऐसे ही ठग दियो बखाने, इसी तरह इना संता नु समझो जिन्ना ने चिट्टे चिट्टे ते लम्बे लम्बे चोले बनाए, हाथां विच माला फड़ी ते कहंदे ने असी घर बार छड्डे आ, असी त्यागी। पर इना संता नु उस तित्तर दी तरह समझो जेड़ा सोना ते बड़ा है पर खांदा कीड़े मकौड़े। ऐसे तरह ए संत चोले ता लम्बे लम्बे पाए ने चिट्टे रंग दे, पर अंदरों ए ठग ने उस तित्तर दी तरह

मैं पखंड नहीं करदा। उस परमेश्वर दा नाम जपया उदे नाल मिल गया। ऐ भाई तुसी भी मन करके उदा नाम जपो, तुसी भी इन्हां पखंडा तो

गरीब नवाज दो पैर दिन दे बीत चुके हैं, आन वाले दो पैर पता नहीं वेखांगा कि ना वेखांगा। धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे भाई बाला तू ही मौत नू दूर समझदा, मौत इतनी दूर नहीं है। फिर दोहा ने हाथ जोड़े और मेरा देसाई आप कृपा करो आप दसो मौत नू कितने को नेड़े समझते हो। धन गुरु नानक पातशाह जी ने तनासरी राग विच शब्द उचारण कीता आख्या हम

बहु पर पंच कर पर धन लियावे। सुत दारा पे आन लुटावे मन मेरे फूले, कपट ना कीजे अंत नवेरा तेरे जी पहले। जेरी पापा दी खटी तू खट रिया है, जिना विच्चों तेरे अनेका रिश्तेदार, बाल बच्चे घर वाली वरसाउंदी है। याद रख ए लेखा उना कोलो नहीं मंगया जाना, अंत न बेड़ा तेरे जी पै लीजे। एदे अमोलक स्वास जो वाहिगुरु ने तैनू बख्शे, तू उना दी कीमत ही ना जान सकिया। जिवें एक कंजूस सारा जीवन कमाई करता रहा, धन इकट्ठा करता रहा, ते मन विच सोचदा है भाई चंगी तरह धन इकट्ठा करके ते फिर मैं इस नूं भोगांगा, फिर सुख मानांगा। सोचदिया सोचदिया अंत समा आ गया। जदों अंत समा आ गया, जमदूता ने आख्या भाई हुण तेरा अंत समा है ते तू साडे नाल चलना। ता कहन लगा मैं बड़ा धन जोड़े है, बड़िया मेहनतां कीतियां हन, बड़े छल कपट करके माया कठी कीती है, मैनू भोग ता लैण दिओ, आ मैनू 24 घंटे दे दिओ, मैं तुहानू 1 करोड़ रुपया दे दिंदा। जमदूता ने कहा एक पल भी नहीं मिल सकता, क्योंकि ए धन उथे चलदा नहीं, तू जिथे गल कर रहे उथे तां नाम दा धन चलदा है। इस कंजूस ने आख्या मैं 5 करोड़ दे दिंदा हां, मैनू कुछ श्वास होर दे। आखिर कहन लगा मैं सारी जीवन दी कमाई जितना भी मैं कमाया है मैं सारा ही दे देंदा हां, मैनू कुछ श्वास उस दे बदले दे दियो। ता जमदूता ने कहा ए श्वास तां किसे भी कीमत ते तैनू नहीं प्राप्त होन लगे। ता कहन लगा फिर मेरी एक मंग है कि मेरी कबर ते लिख देना कि मैं सारे जीवन दे पल छिन कमाई विच धन इकट्ठे करन विच ला दिते, ते सारे जीवन दी कमाई दे बदले मैनू 1 श्वास भी नहीं मिलिया मुल। इस तो भाव है कि जितने अमोलक श्वास हीरियां लालां तो भी महंगे मैं जप जप के सफल करने सी मैं व्यर्थ गवा दिते, क्योंकि हम आदमियां एक दमी पता नहीं अखीरला श्वास कदों आवे। भाई जे श्वास दे नाल तू जपया होवेगा ओ श्वास तेरा दरगाह विच कबूल हो जावेगा। इसलिए गुरु नानक सच्चे पात्र

I will take part.

की सुते है एडी गूढ़ी नींद आई है ये एक मेरी पासा भी नहीं पा निरंकार ने वडेरी अवस्था इको एक पुत जिता है और उसको कोई ना कोई रोग लगा ही कोई उसको चला कहेंगे कोई दीवाना कहेंगे कोई बावला कहेंगे मैं चुप कर गया मैं खामोश हो गया लोकां दे बच्चे खेल दे पर मेरा नाल कदे भी नहीं खेल होर बच्चे माता पिता तू आके चीजा मंगदे पर मेरे नानक ने मेरे को कदे भी कुछ नहीं तीन दिन हो गए प्रसाद नहीं छके पता नहीं किड़ा रोग अंदर जाके सोता है तीन दिन तू मेरा लाल भोजन पाया है ये धन गुरु नानक पातशाह जी ने भोजन नहीं छके ममता की मारी हुई मां माता तृप्ता ने भी मुंह च गुरकी नहीं पाई जिस मां का पुत भुखा सो गया उस मां नू नींद नहीं दी पुत सो गया है मां जाके उठा दी काका भुखा क्यों सो गया एक बुरकी तो वो उच पाए मां दी आंदर ठर जाए बच्चा रज के प्रसाद छक लवे मां पहले रख ते मां का प्यार माता प्रीत करे पुत माता तृप्त इना ख्याल इन्हों विचार क्योंकि माता तृप्ता हजूर नु पुत्र ही सुन गुरु नानक एक और वेखण वाली वखो वक तृप्ता ने जाने सुत कालू ने जाने पुत लालू भतीजा जाने मूले जाने ए जवाई चंदो रानी जाने सरबंधी जय राम साला जाने पर बेबे नानकी ने जाने रब रूप मेरो भाई श्री चंद लक्ष्मी दास ए जानत निज बाप कर पराए बुलार को प्रतीत भली आई है श्री गुरु अंगद साहब ए जानत अकाल रूप ते मूर्खों ने जानिया गुरु नानक जिन्हां नूं भावना दी रोशनी दी जिन्हां नूं भावना दी लाइट नहीं मिली उन्हां ने मेरे धन गुरु नानक पातशाह जी नूं पुराई आती भावना सब तो वड्डी जितने तक सानू अपने गुरु ते पूर्ण विश्वास नहीं आया उतने तक अंदर ज्ञान का प्रकाश नहीं हो सकता जाके हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तस्मर विश्वास ही वड्डी विश्वास ही सब तो वड्डी असी कई बार आके गुरुद्वारे आके गुरु साहब के मथा भी टेक पर मथा टेक के भी
ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ? ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨ, ਮੱਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਟੇਕਦੇ ਪਰ ਹੁਕਮ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਆ ਗੁਰੂ, ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਟੇਕਾਂਗੇ ਪਰ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨ। ਜੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ ਤਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਠੀਕ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਸਤਿ ਵਚਨ। ਇਹ

रोंदे नूं नहीं थक सकदा। जिहड़ा गुरु दा सिख है बां फड़ लैंदा, अपने शरीर ते भावे दुख सहना पै जावे, शरीर ते कष्ट जर सकदा, पर दुखीए दा दुख निवृत्त कर देंदा। भाई कमलीए वर्गा राजे दा वजीर वजीर खां कोड़ी हो गया, ऐसा दुख लग गया, राजे ने भी शहर तो बाहर कढ दिता है, पर भाई कमलिया बंदगी करने वाला नाम जपण वाला सुखमनी साहब का पाठ करता जाता। वजीर खां दे कन्नां विच जो बाणी पई तन मन ठंडा होया, आवाज मारी ओ सिखा अकीदी कलाम पढ़दा, आ बाणी सुनदिया मेरा तन मन ठंडा हो गया। ते भाई कमलिया परपकारी कोल बह के सुखमनी साहब का पाठ सुनाया, फिर इथों तक अपने मोढ़िया ते चुक के गुरु अर्जन देव पातशाह दे दरबार में लिया के दुख दूर कर दिता है। भाई कमलिए ने ऐसा परपकारी, ओ कोड़ी वजीर खान वर्गे जिन्हां दा शरीर कंचन वर्गा कर दिता, फड़ लई बां दुख दूर कर दिता। पर आओ भाई सिखां दा तां प्यार ही इहो जिहा, भावना ही इहो जिही, हिरदे विच परपकार दा बीज बोया हुंदा है, इस वास्ते बां फड़ लईए। दुखियां दा दुख नहीं हो जरदे, रुड़दे जांदे दी बां फड़दे, पर मुख तो सत नाम जप के वाहिगुरु वाहिगुरु कह के फिर भी मन नीवा मत उची। आओ भाई सिखा दा, पर जिहड़ा सिख बन जावे भेखी सिख नहीं, विखावे वाला सिख नहीं, जिहड़ा अथिक अंदरों सिख है, जिहदे हिरदे विचों प्यार है, बस वो प्रगट ही नहीं करता, वो तो कहिंदा ही नहीं, वो तो कहिंदा मैं अजे सिख बनिया ही नहीं, क्योंकि गुरु का मार्ग ही ऐसा है। गुरु के पाए हुए पूर्णिया ते जिहड़ा सिख चलता है, बस वो तो मन नीवा मत उची, कि जिन्हां ते गुरु बख्शिश

अपना आप धर्म वास्ते कुर्बान कर जाना, निशावर हो जाना, ते फिर भी हर वक्त गुरु दा धन्नवाद शुकराना करना। ए पूर्ण सिख दी निशानी, ए पूर्ण शहीद दी निशानी, ए पूर्ण सूरमे दी निशानी है। वो केड़े सूरमे? आओ इन्हां तुकां नूं पढ़ लईए। तन मन धन दा माण ना कर दे।

अपने आप नूं संभालिया, लकड़ा नूं बोझिया, लकड़ा किते डिग ना पै, पर एकदम खूह विच डिगे। पर इधर साहिब धन गुरु अर्जन देव पातशाह कीर्तन दा आनंद माणदिया एकदम संघासन तो हिले। भाई गुरदास जी नूं कहन लगे, भाई गुरदास मेरा प्यार वाला सिख भाई मंझ डिग पी। जानी जान सतगुरु संघासन तो उठे, सिखां नूं नाल लिया, कुछ रस्से नाल लै ले। अज उस थां ते आ पहुंचे जिथे भाई मंझ खूह विच खलोता, सिर ते लकड़ा था। जदों गुरु अर्जन देव पातशाह आए, भाई मंझ नूं तकिया ते गुरु अर्जन देव पातशाह दा मन भर गया, नेत्रां विचों जल विया। ते भाई गुरदास वल तक के कहण लगे, ओ भाई गुरदास तके आ मेरे प्यार वाले, जिन्हां दा मन नीवा निम्रता ते प्यार दे विच रहण वाले। लकड़ा नहीं डिगण दित्तियां, सिर ते लकड़ा चुकियां भाई मंझ खड़ोते। हुण गुरु अर्जन देव पातशाह ने उपरों प्यार नाल इक बोल बोले।

ए नहीं पता कि शैतान गुरु अर्जुन देव पाछा बचन कह रहे खूह विच खलोतिया कह लगे ओ सिखा जे मेरे नाल प्यार है मैनू बाहर कढ़ना चाहुंदा है ते फिर कृपा कर आ गुरु दे लंगर दियां लकड़ां हन पहला लकड़ां नू बाहर कढ़ दे फिर मैं भी बाहर आ जावांगा किते सेवा ना व्यर्थ चली जावे इस वास्ते ते लकड़ां चुकी खलोता किते लकड़ां गिलियां ही ना हो जाए अज दी सेवा व्यर्थ ना हो जावे जदों भाई माध जी ने कहा ते गुरु अर्जन देव पातशाह दा फिर मन भरिया कहण लगे ओ भाई गुरदास आ वेखे आ मेरे प्यार वाले सिख हन आ रूप है सिख दा जिन्हां दे हिरदे विच भावना है जिन्हां दे हिरदे विच प्यार है क्यों ना मैं ऐसे सिखां तो वारी जावां क्यों ना ऐसे सिखां तो कुर्बान जावां जेड़े मेरे तो कुर्बान हो जांदे गुरु तो अपना आप निशावर कर जांदे हन परवाह नहीं करदे ओ भाई मांझ ते इम्तिहान दा परचा तां पिया पर भाई मांझ इम्तिहान दे परचे विचों पास हो गया भावी ने से ऐसी खेल खेडी है पर हुण भाई मांझ उस इम्तिहान दे परचे विचों पास होके विखाया।

मांझ आप ते डिग पे पर पांड नहीं सके। गुरु अर्जन देव पातशाह ने पहला लकड़ा नु बार कटे, फिर रस्से नाल पाई मांझ नु जदों बार कटिया ते गलवकड़ी विच लै लिया। इतना घुट के प्यार कीता, इतना प्यार कीता ते गुरु पातशाह ने फिर वार भी दे दिता। मंझ गुरु का गुरमंझ प्यारा।

नहीं मेरे जिया और कोई, पर मैं तो दूजे पास सोचना, मेरे वर्गा सोना कोई नहीं, मेरे वर्गा जवान कोई नहीं, मेरे वर्गा बलवान कोई नहीं, मेरे वर्गा विद्वान कोई नहीं। मैं तो जद भी सोचिया इस पक्षों सोचिया, अगर भाई गुरदास जी कहने नहीं दूजा पक्ष वेखा वो तेरा छुपिया रह गया। मनुख की विडंबना देखो, एदी ट्रेजडी देखो, एदी शक्ति किवें टोटे टोटे हो रही। जो कुछ नहीं है वो विखाना चाहता, जो कुछ है ये लुकाना चाहता। जो कुछ इनू होना चाहिए वह भुलाना चाहता। कैसी बंदे दे पल्ले की रह गए, मनुख की सारी शक्ति टोटे टोटे हो। कितनी यदि ताकत इस काम से लग गई कि जो कुछ मैं हां वह लुकिया रह जा, लोकी ना वेख लैन, और इना लुकाया अपने आप नू, अपने आप का आप ही पता ना रह गया मैं की। लोगों दी निगाहां तो कोई चीज छुपाई जाए तो अपनी निगाह तो भी छुप जाए। घर च पई कोई वस्तु असी चाहिए घर च आने वाला ना वेखे, असी उत्ते कपड़ा पा देने, कज देने, टक देने, रख देने लुका के, हुंदा की है आप ही भुल जांदी भी घर च है सी कि नहीं। रखी हुई वस्तु, लुकाई हुई वस्तु अपने चेते तो लह जांदी। मैं निंदक हां, मैं लोगों नूं नहीं दसना चाहता। मैं किरतकन हां, मैं किसी नूं कहांगा। मैं कामी हां, मैं क्रोधी हां, मैं किसी नूं नहीं कहांगा, लुकावांगा। ते हुंदा की है आप नूं नहीं पता रहिंदा कि मैं कामी हां। अपनी निगाह तो अपना आप ही ओझल हो, गुनाह अंदर पलदे रहे, अंदर पए हुए दोष, अंदर पए हुए दोख अंदर टिके रह गए। इहदे नाल बेहतर तां इह सी या तां आप निगाह रखदा ती या दूजिआं नूं निगाह रखण दिंदा, की हर्ज सी। लोग वेख लैंदे थोड़ा जिहा माड़ा कह लैंदे, लेकिन घटो घट दोख घरों सुट्टण दी, घरों कढ़ण दी गल तां बण जांदी। भाई गुरदास जी ने मनुख दी इस कमजोरी वल निगाह पवाई। भाई साहब कहंदे ने आओ अपने वल वेखी, लोगों वल वेखते रहांगे, अपना आप लुकाउंदे रहांगे, गलती हो जावे। बहुत ताकत लगती, बड़ी शक्ति लगती। जो कुछ मैं नहीं हां वह विखाउण ते भी शक्ति लगती है, जो कुछ मैं हां उसनू लुकाउण ते भी शक्ति लगती है। और जिहड़ा कहंदे ना कोई चीज चेते करनी होवे ते मत्थे ते हथ मारदा है बंदा, ते कई बार ऐसा भी हुंदा है कोई चीज बंदा भुलाउणा चाहुंदा होवे ते भुलदी ना होवे उहदे ते भी बड़ा जोर लगता। कई तां पागल लोग शराबा पीण तुर पैंदे ने, शराब पी के भुला देवां, किसे होर पासे परच जावां भुल जावां। कोई डरावनी चीज वेख ली है, कोई गुनाह हुंदा वेख लिया कि गुनाह करदिया ख्याल आ गया, कि बंदा चाहुंदा वो जिहड़ा बोझ दिमाग ते है जो सौण नहीं देंदा, खान नहीं देंदा, बहन नहीं देंदा, उस बोझ नूं लाउण वास्ते बंदा भुलाउणा चाहुंदा, बड़ी ताकत लगती है भुलाउण ते भी बड़ी ताकत लगती है। ते बंदे दी शक्ति जे इसे पासे लगती रही माफ करना, ते कमाउण वास्ते कहड़ी शक्ति रह जावेगी। गुरमत धर्म भगती कमाउण वास्ते ताकत कित्थों लियावेगा, सारी ताकत तां टोटे टोटे हो रही। भाई साहब कहंदे ने नहीं, जो कुछ तू है वह वेख लैण दे लोकां नूं, बल्कि चंगा कर जे लोकी नहीं वेखदे ते आपे ही दस दे। ते जे तेरी जरूरत नहीं ना पैंदी, लोकां नूं दसण दी जरूरत नहीं पैंदी, ते इस तरह कर गुरु अगे ही कह दे। धन गुरु कलगीधर साहिब दसम पातशाह ने एक बड़ी प्यारी परंपरा बनाई, वो कहंदे ने बजर कुरैत हो जावे, पंजां प्यारियां दे सामने पेश हो जावे, क्योंकि गुरु दा रूप ने। मत शर्म करो, इन्हां दे सामने आके बैठ जाओ ते कह दिओ गुरु रूप खालसा जी मैथों रोमां दी बेअदबी होगी, मैनूं खिमा कर दिओ, ला दिओ तनखा, गुनाहगार हां, लाओ सजा मैनू, पर मैनू माफ कर दिओ, मैं अगों तो राह पै जावां, मेरी निगाह विच मैल आ गई, मेरे कोलों बजर कुरैत हो गई, पर स्त्री पर पुरख संग हो गया, मैनू खिमा करो, मैनू राह पाओ। ते जे नहीं दसांगा पंजां प्यारियां नूं नहीं दसांगा, खालसी अगे नहीं रखांगा, गुरु अगे नहीं रखांगा, दोष अंदर रहेगा, चलता रहेगा, बलदा रहेगा, बदता रहेगा, गुनाहगारी चलती रहेगी। नहीं, गुनाहां ते निगाह रखण दी लोड़ है। और एक होर गल,
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਜਾਨਵਰ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੰਗ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਡੰਗ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼। ਸੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਪਿੱਛੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਡੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਖ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਸੱਪ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਜਾਵੇ ਇਹ ਕਤਰਾਏਗਾ, ਅਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਪਿੱਛੂ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦਾਲ ਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਚਾਨਣ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਖੂੰਜੇ ਚ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਨਾ, ਬੁਰਾਈਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਡੰਗਦੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਕਿਤਨਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਤਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਕਿਤਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਿੰਦਾ ਕਿਤਨੀ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਕਿਤਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਣਾ ਪੈ ਜਾਣਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਡੰਗਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਨ, ਇਹ ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਘੋਲਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਿਚੋਂ ਲੱਥ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰਮਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਦੁਰਮਤ ਤਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਢੰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਤ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਅਪਰਾਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਜਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਦੋਸ਼ ਧਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਮੁਜਰਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੁਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਮੁਜਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਹੀ ਲਵੇ ਨਾ, ਕਨਫੈਸ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੁਜਰਮ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਾਂ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।

குணா பலவே அந்தர் குணாதி விருத்தி சலதை காட்டு குணா காரோ இப்போ நீ தாலி லக்கா லேக்கன் கர்ணா சௌத சென்னை குணாகார் भाई साहब कहने में हो अपराधी गुनाहगार हो बेमुख मंदा चोर यार जुआर हो जुआ एक खेड़दा है पिया फड़िया गया एक खेड़दा है पिया नहीं फड़िया गया एक ओजदा खेडनु जी करदा डरदा नहीं पिया खेड़दा ओथे दा ओथे ही खड़ा कोई वखरा नहीं खड़ा उनर एक शराब पी रहा है डिग रहा है एक शराब पी के मुंह च खुशबू घोल लैंदा है पता नहीं लगन देंदा आके छेती नाल सौ जांदा है नहीं पता लगा एक ओ है जिदा शराब पीन नू जी करदा है ते डाक्टर ने रोक रखे है या करदिया तो डरदा नहीं पीता इको ही थां ते खड़े तिन्ने ही गुनाहगार भाई साहब कहंदे ने जे अंदर चोरी है कर लईए फड़े गया नहीं कीती करन नू जी करदा है तां भी चोर है ते कदे कदे अपने आप ते निगाह एवें मारनी चाहीदी है करन नू जी करदा है गुनाह करन दी वृत्ति अंदर खड़ी है कि गुनाह करके फड़े नहीं गए कोई कसर होवेगी गुनाहगार साबित नहीं होए या गुनाहगार साबित हो गया फिर भी ठीक हां चोर यार जुआर हो पर घर जो हंदा लोगों ने घर वाल मेरी निगाह निंदक दुष्ट हराम खोर ठग देश ठगंदा ते भाई साहब नु यह सारे औगण जेड़े ने चंगे नहीं लगते भाई साहब कहने ने औगण कढ़न की लोड़ है गुरु के प्यार वालियों दे नाल रल के सिमरन करके बख्शंद सतगुरु अगे हाथ जोड़ दईए कि पातशाह मैनू बख्श लो ते अगे धोरा पा ते जिवें जिवें अपने आप ते निगाह मारीए ना जिन्ना चिर तां लोकां वल वेखदे रहीए अपने औगण ढके रहणगे लोकां तों भी ढके रहण हो सकदा है ते अपने आप तों भी छुपे रहण पर सियाणा बंदा इह गलती नहीं करदा उह कहिंदा लोकां दे औगण वेखण दा फायदा की होवेगा लाभ की होवेगा हां सज्जन मित्र होवे प्यार वाला होवे ओनू कहिए गुरमुखा सजना देख आपा सत्संगी हां गुरु के सिख हां गुरु के बाणे विच हां ए काम अपने बाणे नू शोभा नहीं देंदे प्यार नाल बेनती करके कह दिए फिर तां है कोई गल नहीं फिर तां परोपकार वाली गल है नाले अगला मन लवे ना मनेगा क्रोध विच आ जाएगा पर झटका तां लगेगा हो सकदा सुधर जावे कल नू पर मैं किसी की पिठ ते बह के ओदी निंदिया करी जावां फलाना जी बड़ा हरामी है फलाना बड़ा कामी है फलाना बड़ा किरत घन है कोई लाभ नहीं होने लगा ओदा कुछ सवरना नहीं ते मेरा रहना कुछ नहीं मेरी बिरती ते जिवें जिवें किसी भी औगण चतारीए ना अपनी बिरती विच उन्हां औगण दा महाराज तां कहंदे ने सांझ करी जाए गुणा केरी छोड़ औगण चले औगण वेखो ही ना गुणा की सांझ करो सारे लोगों नाल भले लोगों नाल गुणा की हर बंदे विच गुण भी है ते औगण भी है ते जदों औगण वेखांगे ना अपने वेखी गुण वेखीए ते दूजिया दे वेखीए बंदा कुछ दा कुछ बनता चला जाएगा होर दा होर हुंदा चला जाएगा ते भाई साहब कहंदे ने गलती मैथों ए होई है बेमुख होवन बेमुखा बेमुखा तो जेड़े बेमुख ने माड़े तो माड़े ने मैं जे बेमुख न रहे मेरे नाल तां कोई नहीं वड्डा क्योंकि मैनू अपना पता है लोगों का मैनू पूरा नहीं पता हर एक ने अपने आप से पर्दा पाया है मैं लोगों वाल जिन्ना को वेख्या या तो अतकथनी तो कम लैके उन्होंने बारे कह रहा या एवें गलत गल कह रहा होवांगा या जितना को वेख्या है वो थोड़ा अंश मात्र वेख्या तो मैं कह दिता सारा तो किसी अंदर मैं वेख नहीं सकता मैनू तो अपने अंदर का पता नहीं मैं किसी अंदर कि झाती मार सकता ते जे मैं अपने आप नूं वेखां ते लोकां नूं तां वेख्या थोड़ा बहुत बेमुख वेख्या है अपने आप बारे वेख्या ते मैनूं तां अपना पूरा पता है ते जिसले मैं अपने आप बारे वेख्या मैं वेख्या मेरे वर्गा बेमुख होई मैं जेहे बेमुख ना डिठे कहंदे ने बजर पापा बजर पाप मैं जेहे कर वैरी इठे मेरे वर्गा मूर्ख होवेगा महापापा तो महापाप जेड़े ने मैं उन्हां पापियां नाल ते पापां नाल मित्रता पा रही पाप दे कारणां नाल मैं प्यार पा रही कर कर सिखा बेमुखा कहते बेमुखा दे लेखे तो मैं कीते ने उन्हां दी निंदा तां कीती है मैं आपो बुरे जान के सिखे लोगों नूं अपने आप तो बुरा जाने अपने आप नूं चंगा करके कजदा रहे गलती हो चाहिदा ए सी कि अपनियां बुराइयां वेखा लोगों के गुण वेखा लोगों ने मैं शोभा करा ते अपने बारे दसा कि मैं ठीक नहीं हां लोगों की निंदा करता रहे अपने आप नालों बुरे दसदा रहे कहंदे ने लिख ना सकण चित्रगुप्त सत समुंदर समान कहंदे ने सत्ते समुंदर भी लग जाण इस चिट्ठे नूं लिखण वास्ते ते मेरे औगण लिखण तों घट ने चित्रगुप्त भी लिखण लगे रहण ते मेरे औगण सारे लिख नहीं सकदे।

نام دے نال صدق بندا ہے نام میٹھا لگدا ہے اس لئی میرے نال چلو ہوتی مردان سنت بابا کرم سنگھ جی رہندے ہیں انہاں کول چل کے بینتی کردے ہیں کیونکہ مہاپرکھ تاں وہی ہے جیڑا گرو گرنتھ صاحب نال جوڑدا ہے جگتی وچ مکتی کر دیندا ہے राजा बड़ी निम्रता दे नाल सिदक दे नाल महापुरख बाबा करम सिंह जी होती मर्दान वाले पास गया। ए ओ महापुरख सन जिहड़े जवानी विच फौज विच भर्ती सन आप दी समाधि लगी रही सारी रात ड्यूटी ते नहीं जा सके इन्हां दी थां ते ड्यूटी धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने दिती ते जदों सवेरे गए ना मन विच सोचदे आ ना भाई नौकरी तो जाए ही जाए पर अंग्रेज का राज है पता नहीं दंड की मिलेगा सजा की मिलेगी। ते जलो अगे गए तो अफसर बैठा होया सी उठ खड़ोता अपनी खुशी तो दस्त पंजा लिया ते कहन लगा करम सिंह मैं सारी रात सारिया नू चेक कीता पर जो ड्यूटी तू दिती है वो होर किसे नहीं दिती। उच्चारण करो श्री सात संगत जी कम से कम अगे बैठे होया दी बिरती जरूर जोड़नी चाहिए है समाधियां ला लो ये गर्मी तुहानू लगेगी नहीं जदों अमृत ठंडा पवेगा ना इस दे विच बस जुड़ जाओ गुरु दे चरणां विच उचारण करो श्री। एक दो मिनटां विच मैं आपनू बाणी दा प्रताप दसना ए ओ महापुरख जिन्हां दी थां ते आप कलगीधर पातशाह जी ने सारी रात ड्यूटी दित्ती। राजा जदों पहुंचिया महापुरखां ने आख्या जल पानी छका के संगत विच ही रह चलो। महापुरख संगत विच आप भी पहुंच गए समाप्ति होई कीर्तन दी ते सुख शांत पुछन लगे ता राजा रो पिया महाराज भई निरंकार ने राज भाग दुनिया दे सुख बख्शिश कीते सी पर नाल दुख भी बड़ा वड्डा ला दिता पगंदर दा फोड़ा निकला है ते आप कृपा करो। महापुरखा ने हाथ कीता गुरु ग्रंथ साहब वाल ओ भले पुरछा ठीक तो उन्हें करना है शरब रोग का छारे जपो शरब रोग का औखद साडा बच्चा बीमार होवे किवें डाक्टर वाल अखां जुड़ जांदियां कोई मुकदमा पै जावे चंगे तो चंगे वकील वाल ध्यान जांदा पर ओ तनता दे योग हन जिन्हां दे हाथ जुड़ जांदे हन गुरु ग्रंथ साहब अगे महाराज तू कृपा कर। महापुरुष कहन लगे राजन बाणी दे विच सारे ही अमृत हन विच बाणी अमृत सारे ते पंज पाठ जप जी साहब दे रोज करेगा कह लगा महाराज मैं जरूर करांगा क्योंकि मौत सामने दिखाई दे रही है। महापुरखा ने कहा भाई जल विच खलो जावी अमृत वेले ते पंज पाठ जप जी साहब दे करनियां नूं उतना चिर उस फोड़े ते जल मलदा नहीं गुरु कृपा करेगा। प्यारी सात संगत जी महापुरखा दा वचन मनना क्योंकि गल तां वचन मनन नाल है ना। अमृत वेले उठ के राजे ने जो नितनेम आरंभ किया 40 दिन दे अंदर अंदर पता ही नहीं लग्या फोड़ा कदे निकलिया भी सी के नहीं निकलिया। उच्चारण करो श्री तिस साहेब की टेक सारे जपो टेक गुरु के सिख नू बाणी दी है सिख दा साहेब है धन गुरु ग्रंथ साहब। एक बार प्यार नाल आखो धन गुरु ग्रंथ साहब ते फिर क्यों ना भाई दुख

मेरी चिंता मिट गई है और ना मैनू डर आउंदा है ते ना मेरे अंदर कोई चिंता आउंदी। इसलिए कि तू मेरा सारिया थावां ते राखी करना, सारिया थावां ते तू मेरा राखा है। जे तू मेरे नाल है ते मैनू डर किसदा, मैनू डर किसदा। जे तू मेरे नाल है तो मैनू अग की करूगी, जे तू मेरे नाल है तो मैनू कोई बिपता संसार की सता नहीं सकती और मेरा कोई नुकसान और डरा धमका नहीं सकती मैनू, क्योंकि तू मेरा राखा है सारिया थावां ते। इसे लिए मालिक सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने फरमाया, हजूर ने बड़े माण विच बड़े जोर विच किया कि एडा मेरा वाहिगुरु वड्डा है कि भावें मैं अग विच, भावें मैं देग विच, भावें तत्तियां रेतां सीस ते पईयां, पर मैनू तत्ती वाह भी नहीं लगी। ये कौन कहेगा? खसम वाला, मालक वाला, गुरु वाला जिहड़ा है ही बेगुरा, वो कहेगा कि जिसनू कदी पिता दी गोद विच बैठन दा सुभाग समा ही नहीं प्राप्त होया, वो मान की कर सकदा किसे ते। जिसने कदी पिता कोलों अमृत ही नहीं पीता, वो कह सकदा है कि मेरा बापू, मेरा पिता मेरे वास्ते आ करेगा? नहीं, नहीं कह सकेगा, उन्हूं अपनी कमजोरी दा पता है। लेकिन सतगुर सच्चा पातशाह बड़े तान नाल, बड़े मान नाल हजूर फरमाते ने, ताती वाओ न लग गई पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे न पाई, सतगुर पूरा पेटिया जिन बणत बनाई। राम नाम औखद दिया एकै लिव लाई, राख लिए तिन रखन हार सा ब्याध मटाई, कहो नानक कृपा पई प्रभ पए। उस मान विच आके, तान विच आके असी कौन हां? सारे बच्चे, सारा परिवार सतगुरु जी दा, बच्चे और बच्चियां परिवार मालिक सतगुरु, सतगुरु परिवार दा मालिक है साडा। तो असां ए तो कदी नहीं कहना कि असी सतगुरु दा परिवार हां, पर आपां पढ़ लईए जरूर, सारी संगत पढ़ियो। गुरु अर्जन देव अकाल पुरख की गोद विच ते सारी संगत गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह दे चरणा उते, फोटो ते इवें आएगी ना, पता ते इवें ही लगेगा ना, अकाल पुरख की गोद विच, अकाल पुरख दे चरणा उते साहिब गुरु अर्जन देव सच्चा पातशाह और उन्हां दे चरणा उते आपां सारे। उस मान विच आके सतगुर सच्चे पातशाह हजूरी विच जिवें उन्होंने माण किया, आपां भी माण करिए ना सारे। तो बोलो सारे, बीबियां उच्ची आवाज विच और बड़े कंट्रोल विच, गलबात छोटी छोटी साडे को नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सत्संग है, सचखंड है, वैकुंठ है, इसी महिमा का पारावार नहीं। जे असीं नहीं सोचांगे तो बेअदब होवांगे। सारे पढ़ियो।

हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक। मुंह मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक। अवगुण कौन चितार दे अवगुण कौन चितार दे गल सेती लायक। ज्ञान रास नाम तन सौंपियो नू इस सौदे लायक। सांझी गुरु नाल बहाले मैनू एक भाईवाली कराई। मेरे वाहिगुरु ने गुरु नानक सच्चे पातशाह नू मेरे नाल भाईवाल रला दिता, यानी साडा दोवां दा सांझा हो गया। उस विच सांझी गुरु नाल